काशी वलट गन्नत बे काशी वलट दिन्नत बे मनुष्य कम मिनी सुनी काशी वासी अति आय लंग बहुम ही गाई गन्नत ने मनुष्य कम मिनी सुनी काशी वलट गन्नत बे काशी वलट दिन्नत बे मनुष्य कम सुनी काशी वासी अति अयलंग।